मीता दिन राला चौ फंदारा ना तुका ना वान ले लाई ईसक ने तलाता हम फुलो रस्तेर पुरुम नीचा इज़ायरा इनाओ इतम निरा दियो फियों फिला संसारा रचम सी फुल टेप करू मेगा एर्स तुपना रचता सी पनात तुसा लुवंद्रिया महाइम साग मीता दिन राला क्यों